0: राकेश का मचमच करता है, समझ में नहीं आ रहा तेरा घर का पता है यार, धुंधे धुंधे परेशान हो गया।
1: तो कटिंग आना है।
0: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ,

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

करने वाला हूं। जब मैं इस शेर को पढ़ता हूं तो मुझे एक वाकया याद आता है। वो दोस्त हमारे यहां बैठे हुए हैं, आगे नहीं आ रहे, उनकी मजबूरी है। जब मैं वो शेर पढ़ूंगा तो वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मदीने में कैद हो गए थे, तो उस वक्त मैं उन्हें शेर मिले, जब वो छोड़ के आए थे तो मैंने शेर कहा था।

क्या मतलब कि जब भी हुजूर का जिक्र हो रहा हो, हुजूर की महफिल हो रही हो, तो बुत बन के नहीं बैठना, हाँ मिल के पढ़ना, झूम झूम के पढ़ना। शर्म आती है तो शर्म को बालाए ताकत दे। ये हुजूर का जिक्र है, इसमें शर्म का है। हुजूर हमारे लिए कितना हुजूर ने रातें जागी, कयाम किया, सुबह, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। बस अर्ज करने का मकसद यह है कि जब महफिल में आ जाए, हुजूर की महफिल में, तो सारी शर्म को छोड़ के आए। शर्म उसमें कीजिए जिसमें करना चाहिए। हुजूर के जिक्र में शर्म नहीं होनी चाहिए। ये तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हक है, ये हुजूर का हक है यहाँ पर कि हम हुजूर का जिक्र करें।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats, and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: आप भी बोलते हो पता नहीं, माया ने भी लिखा पता नहीं, फिर किसको पता है? रितु थी, माया वापस आएगी ना?

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम और 100.6 एफएम पर वेस्ट यॉर्कशायर में आप सुन सकते हैं और डीएबी पे आप ब्रेडफोर्ड कीतले इल्कली स्किप्टन लीड्स हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्ले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर पे सुनना चाहें तो भी और गूगल प्ले स्टोर पे भी आप सुन सकते हैं और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm पर आप सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। अभी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक दो बजे तक। अब से लेकर एक बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। एक और दो के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिटा उदावर के साथ और हिटा उदावर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो एंजॉय कीजिएगा हिटा उदावर।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स 119-21-21 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 कॉल 0-1274 056-014

0: जी दोस्तों, अभी आपने उदय नारायण और श्रीया घोषाल की प्यारी सी आवाज में हिट ऑफ द आवर सुना दोस्तों। इसके साथ ही चलेंगे, टाइम चेक करेंगे और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जनाब। और हमें फ़ोन किया जनाब खान साहब आपने, शुक्रिया फ़ोन करने का। और उसके बाद जरीना साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। और आपके साथ साथ जनाब जो आने वाला गीत है, प्यारा सा गीत है, कमर्शियल का टाइम है, उसके बाद ही आप दोस्तों के लिए पेश करेंगे। तो जनाब टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:15, यानी कि 11:15। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: For your family treat this summer,
5: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
4: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
5: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
4: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
5: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
6: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब एक और प्यारा सा गीत आ रहा है जनाब, बड़ी प्यारी सी शायरी के साथ। हीरा खान साहब, फोन करने का शुक्रिया जनाब, आपके नाम करते हैं आने वाला गीत, और खान साहब आपके नाम भी करते हैं, और स्पेशली जनाब ये गीत गुलाम भाई आपके नाम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। बड़ी प्यारी शायरी है, इसमें यकीनन आप सभी सुनने वाले पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और शायद भाई झेल वाले आप भी आंख मचोली कर रहे हैं फोन के साथ, तो मतलब ये हुआ कि आप सुन रहे हैं और बिजी हैं, काम कर रहे हैं और अपनी आदरी लगवा रहे हैं कि भाई हमें मत भूलिएगा, हम भी सुन रहे हैं। तो जनाब हम आपको कैसे भूल सकते हैं, शायद भाई आपके नाम करते हैं गीत, बड़ा प्यारा गीत है, इंजॉय कीजिएगा इसको।

0: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद जनाब प्यारा सा गीत होगा तारिक जुल्फी साहब। शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आप अपने तमाम दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं तो आपके दोस्तों के नाम गीत करेंगे। कमर्शियल के बाद जो गीत होगा, हीरा खान साहब आपने फिर फ़ोन किया, आपसे गपशप हुई, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके नाम भी करेंगे, आपकी जन्म से आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे। और इसी गीत को मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, हुमैर, बाबर और इफराज के नाम भी करेंगे। और इसी गीत को सायमा जी आपके नाम भी करेंगे और हाजरा जी आप के नाम भी करेंगे। मुझे पता है कि आप इस वक्त थोड़ी सी जो है वो अपसेट हैं, क्योंकि आप दो सहेलियाँ बड़े प्यार से इकट्ठी काम करती थीं और गपशप के दौरान जनाब हंसी मजाक भी होता था, तो आजकल आप अकेली हो गई हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, सादिया हमारी प्यारी बहन आ जाएंगी और फिर आप का जो है वो ही मामूल के मुताबिक जो है वो अल्लाह गुल्ला होगा। तो जनाब इस गीत को आपके नाम भी करेंगे और तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं जनाब अगले गीत की जानेब। गुलाम भाई आपके नाम करेंगे और आपका स्टाफ जो है उनका फेवरेट गीत है मलका जी का, और हमेशा इस गीत की फरमाइश करते होते थे ये। और नहीं, जिया जी का गाना नहीं है भाई, वो गाना नहीं प्ले कर रहा हूँ, कोई और है, ये जिया जी का नहीं है। तो मलका जी, जिया जी, आशा जी और रानी जी आपके नाम भी करेंगे और नवीद भाई आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और मोना जी ये गीत आपके नाम भी करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त चेक क्या हो रहा है, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:44 यानी कि 11:44। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा सदाबहार गीत होगा, वो होगा वाजिद भाई हडर्सफील्ड से। आपने फ़ोन किया काफ़ी दफ़ा, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी तारिक जुल्फी साहब, हीरा खान साहब, शाहिद भाई जेलम वाले और खान साहब और जनाब ग़ुलाम भाई और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम गीत होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत और गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। रफी साहब की प्यारी सी आवाज में आपने प्यारा माजे चाहते हैं मोहिंदर कपूर की आवाज में आपने जनाब गीत सुना। और मजे की बात यह है कि कुछ सेकंड्स रहते थे गाना खत्म होने में, और मेरी आवाज तो वो सुन रहे हैं जनाब चौधरी फरियाद साहब, लेकिन उनकी आवाज मैंने नहीं सुनी क्योंकि वो इतना जल्दी में मैंने फोन उठा लिया कि वो सोचेंगे कि मेरा फोन क्यों नहीं आमिर उठा रहा। तो मैंने फोन उठाया और सिर्फ इतना कहा कि जनाब गाने खत्म होने में 4 सेकंड्स हैं, अल्लाह हाफिज, बाद में बात करते हैं। तो जनाब इस तरह जल्दी में चौधरी फरियाद साहब आपसे बात हुई क्योंकि आपका कॉल बड़ी लेट आई, क्योंकि आप वहाँ इंटरनेट के ज़रिए सुन रहे होंगे, इंटरनेट तो वहाँ काम ही नहीं करती, लगता है आप सुन नहीं रहे हमें आप, क्योंकि वहाँ इंटरनेट आजकल कश्मीर में नहीं है, बंद की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ सिर्फ टाइम जो है आपको पता है, इस टाइम पर हम प्रोग्राम करते हैं और इस वजह से आपने फ़ोन कर दिया, ना आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं। तो अफसोस ही है, अब क्या कह सकते हैं। तो एनीवे चौधरी फिराज साहब आप के नाम गीत करते हैं, उसके बाद हीरा खान साहब शुक्रिया आपका भी, बहुत प्यार से आपने बात की तो अपने अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहा जनाब, स्पेशली अयूब चौहान साहब और चौधरी फिराज साहब के लिए आपने गीत सुनना चाहा। और उसके बाद जावेद मीर भाई आपने भी फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा जनाब आपसे बात करके, बड़े दिनों के बाद आपने प्यारे भाई से बात हुई।

जनाब रफ़ी साहब का गाना भी प्ले करने जा रहा हूँ, आप की जानिब से आपके दोस्तों के नाम होगा। उसके बाद अब्दुल कय्यूम साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा अब्दुल कय्यूम साहब आपने फ़ोन किया और आप के नाम भी करते हैं जनाब इस गीत को। छोटा सा गीत है लेकिन बड़ा मज़े का गीत है और जनाब वाजिद भाई बार बार एड्रेस फिर से मिस कॉलें दे रहे हैं और उनसे बात भी हो गई है फिर भी वो मिस कॉलें दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है। तो एनीवे चलते हैं जनाब, सुनते हैं रफ़ी साहब को और गुलाम भाई आपके नाम भी

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी प्रोग्राम का ये दूसरा जो हिस्सा है इसमें भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें। तो जनाब यही हिस्सा है जिसमें आप डेडिकेशन कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा जो होगा वो लाइव कॉल्स का होगा। उसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। उसमें डेडिकेशन नहीं होगी। तो अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं किसी के साथ, जनाब किसी के नाम के साथ अपना गीत जोड़ना चाहते हैं, तो फिर यानी कि गीत के साथ किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आमिर वेक अप, लगता है आप तो सोने जा रहे हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है जनाब। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा। नंबर होगा 01274300666। तो चलते हैं जनाब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिटा बदावर के साथ। और हिटा बदावर का गीत जो है आप तमाम दोस्तों के नाम करूंगा जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आपके नाम किया जनाब ये गीत, तो इन्जॉय कीजिएगा।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। आप चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:13, यानी कि 12:13। आप कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे और चौधरी फिराज साहब, आपने फिर फ़ोन किया, आपसे बात हो नहीं पाई क्योंकि आपकी वहाँ कॉल पे कुछ रिसेप्शन की प्रॉब्लम थी या क्या थी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई। तो एनीवे शुक्रिया फ़ोन करने का। उसके बाद रॉकी बहना, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप अपने बच्चों के लिए गीत सुनना चाहती हैं, यासर, साहिल और वारिसा के लिए, तो उनके नाम गीत होगा कमर्शियल के बाद जो गीत है। और उसके बाद अली बुखारी साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आपके नाम भी गीत होगा और आपके साथ साथ जनाब वाजिद भाई इंडस्ट्री से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम भी करेंगे। और इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं जो इस वक्त अगट्ठी काम में भी मसरूफ़ हैं, और कान जो हैं हाथ मसरूफ़ हैं काम में, और कान जो हैं मसरूफ़ हैं रेडियो सुनने में। तो जनाब नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा, आपके नाम भी करेंगे। और आपके साथ साथ हाजरा जी, आपके नाम भी करेंगे। और यही गीत अमरीन साहब, आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अभी हमारे प्यारे भाई हैं आबिद भाई, इस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री है उनकी, और जनाब साथ में रेडियो भी सुन रहे हैं। उनसे गप हो रही थी लेकिन क्योंकि गाना ख़त्म हो गया और हमारी गपशप ही वहीं रुक गई, फुल स्टॉप हो गया। एनीवे आबिद भाई, बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया और हमारी खैरियत पूछी, हाल पूछा, और ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब आपने इस तरह के भाई हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमें सुनते हैं और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। आप दोस्तों की वजह से ही प्रोग्राम करने आते हैं हम लोग, क्योंकि आप दोस्त जो हैं उनका प्यार ही हमें खींच कर लाता है। तो आबिद भाई, आने वाला गीत आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम होगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। क्यों, गाना ख़त्म हो गया, मैं पूछना फिर टाइम नहीं बचा था कि मैं पूछूं आबिद भाई आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। तो एनीवे आने वाला गीत जो है, उम्मीद रखूँगा आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपके स्टाफ को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मलिक इम्तियाज़ साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे गपशप करके। आप प्यारा सा गीत सुनना चाहते हैं जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब के लिए, सुनना चाहते हैं इकमाज मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह दिता हुमैर बाबर और इफराज के लिए। और हमारे प्यारे दोस्त जनाब टॉम साहब भी फ़ोन कर रहे हैं, तो जनाब फ़ोन रख दीजिएगा क्योंकि मैं ऑन एयर बातें कर रहा हूँ और गाना आपके लिए जनाब मैं लगा दूँगा। टॉम साहब, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप फ़ोन करें और मैं गाना आपके लिए ना लगाऊँ। तो आप जनाब सुनना चाहते हैं गाना सबीना के लिए, तो आपके नाम भी करेंगे, आपकी जन्म से सबीना के नाम करेंगे। और उसके बाद खान साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का, आप भी फ़ोन कर रहे हैं, आपके नाम भी करेंगे। तो गुलाम भाई, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं और इसी गीत को कमल साहब आपके नाम भी करेंगे, तो चलते हैं सुनते हैं प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और उदन नारायण की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना, राजा फिल्म से लिया हुआ गीत। और दोस्तों, इसके साथ ही कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा पंजाबी का गीत होगा, क्योंकि टॉम साहब फिर आपने फोन किया और कहा कि आप पंजाबी का गाना सुनना चाहते हैं जनाब, तो पंजाबी का गाना कमर्शियल के बाद होगा। टॉम साहब आपकी जाने के जानवे से सबीना के लिए, और उसके बाद प्यारी बहना जीत कौर, आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का आपका, और आपके नाम भी करते हैं ये प्यारा सा पंजाबी का गीत। और उसके बाद जनाब तनवीर अख्तर साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी करते हैं ये पंजाबी का गीत। और इसी पंजाबी के गीत को नज़र करना चाहूँगा जनाब, मलका जी, जिया जी, आशा जी और रानी साहबा, आपके नाम भी, और आपके साथ साथ इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। और यही गीत इस वक्त शहजादे तीन जो हैं वो बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त हैं वहाँ बैठे हुए उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, और हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीष साहब चक्की वाले जो हैं वो भी सुन रहे हैं, उनके नाम भी करते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और आप चलते हैं जल्दी में, क्योंकि कमर्शियल आने वाली है, तो हम चाहेंगे कमर्शियल से पहले पहले आप प्यारा सा गीत सुन लें और फिर आराम से जो है वो कमर्शियल सुने। और ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 12। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। सिकंदर भाई, आपने फ़ोन किया, आप तीनों शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, और पंजाबी का गाना थोड़ी देर पहले आपके लिए माज़ चाहता हूँ आपके लिए लगाया था, और आपने मिस कर दिया, और वहाँ बैठे हुए आपके साथ राजा अनस साहब, उनके नाम भी करेंगे। और अब क्या है कि हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई गुलाम भाई ने भी फ़ोन किया, लेकिन माज़ चाहता हूँ उनकी कॉल ले नहीं पाया। तो चलते हैं जनाब, सब गुलाम भाई आपके नाम भी, और जनाब खान भाई आपके नाम भी, और आपके साथ साथ जनाब आबिद भाई आपके नाम भी, और गाना प्ले करेंगे मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम भी करेंगे, और दीगर जितने दोस्त सुन रहे हैं सब के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए, तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, इंजॉयबल गीत है। और इसी गीत को ज़रीना साहब आप भी फ़ोन कर रही हैं, आपके नाम भी करेंगे, और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे, और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लता जी और रफी साहब की आवाजों में। और अब दोस्तों एक और प्यारा सा गीत मैं अपनी तरफ से तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जो हैं उस गीत को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं लता जी की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत, सदाबहार गीत, सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आगे है जनाब और ये हिस्सा जो होता है लाइव कॉल्स का होता है, इसमें कोई डेडिकेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो दोस्त आते हैं लाइव कॉल्सों में जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी शेयर कर सकते हैं या फिर कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम, सोज भरा गीत है, मेरा फेवरेट गीत है, आप सभी के नाम करता हूँ।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने साधना सरगम की प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 1:13, यानी कि 1:13 तो चलते हैं कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद लाइव कॉल का सिलसिला होगा और चौधरी फिजाज साहब आए थे, हमने होल्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम बचता था, तो मैंने सोचा इनके पैसे खर्च होंगे। जावेद मीर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते हैं, सुनते हैं पहले कमर्शियल, कमर्शियल के बाद फिर लाइव कॉल्स की जाने पड़ेंगे।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2pm with the event from 3pm until 8pm. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं जनाब। और ये वेंसडे का जो प्रोग्राम होता है, इसका आखिरी हिस्सा जो होता है, ये लाइव कॉल्स का होता है। इसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। अगर आप भी शायरी का शौक रखते हों या गीत गुनगुनाने का, तो ज़रूर आइएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं जनाब। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जनाब जावेद मीर भाई इस वक्त, तो तालियों की गूंज में उन्हें खुश आमदीद, वेलकम जी, एनू सत बिस्मिल्ला कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। जावेद मीर भाई, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ठीक है मेरे भाई, आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह
1: वेलकम बैक।
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।
0: आमीन आमीन आमीन।
1: मुकम्मल तौर पर आपको आराम दे।
0: आमीन आमीन। और आप कैसे हैं? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ मेरे भाई।
0: हमेशा अल्लाह आपको सलामत रखे सर। जी सर, आज क्या लेकर आए?
1: फरियाद साहब नहीं आए?
0: जी चौधरी फरियाद साहब आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो जब सोचता हूँ तो अच्छा ही सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे लिए वो बुरा हो जाता है, बुरा हो जाता है। मैं सोच रहा था कि क्योंकि उस वक्त अबाउट 54 मिनट्स थे मेरे ख्याल में, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ 12:54 पास पे उन्होंने फ़ोन किया और कहा मुझे होल्ड पे रख लो। तो मैंने कहा सर अभी 6 मिनट देते हैं ख़बरों में, फिर 2 मिनट ख़बरें होंगी, फिर हिट ऑफ द आवर लगाऊंगा, फिर कमर्शियल होगी, आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे और आप ऐसा करो कि बाद में फ़ोन करना। तो वो कहने लगे नहीं मुझे लाइन नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं, बड़े अरसे के बाद मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और कुछ दोस्तों को पता ही नहीं कि मैं प्रोग्राम शुरू कर चुका हूँ, तो वो शायद नहीं आए, आज इतना बिजी नहीं होगा, तो आप जो है वो आराम से सुकून से बैठे और फिर बाद में जनाब हाँ, लेकिन वो शायद उनको अच्छा ना लगा हो।
1: आपने उनके पैसे बचाए, टाइम बचाया।
0: हाँ सही।
1: कुछ लोग जो है ना वो बचाते ही नहीं है, कहते हैं अच्छा ही खलोते रहो,
0: तो
1: अगले की जरा निपटाई की नाना, एक एक घंटा हूं उसकी खिलाई रखना है, बड़ा अफसोस।
0: नहीं वो तो है, अगर यहाँ है तो फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके टाइम ही आपका जो है वो ज़ाया हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि हम टाइम को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, हालांकि टाइम जो होता है
1: अगले की बशा रखना चाहिए ना।
0: हाँ टाइम जो
1: दूसरे कर रहे हैं ना,
0: जी जी
1: हम फ्री कर रहे हैं ना, फ्री कॉल है।
0: सही है सही सही,
1: वो पैसे उसके लगते हैं।
0: सही है सही सही। आप होल्ड कर लें एक सेकंड, क्योंकि मैं एक और कॉल जो है वो होल्ड पे कर लूं। तो जी जावेद मीर भाई फरमाइए।
1: आवाज बंद हो गई थी।
0: हाँ मैंने वो होल्ड किया था आपको, क्योंकि दूसरी कॉल मैंने होल्ड की है। अनम।
1: अच्छा चले, मेरी तरफ से आमिर शहजाद साहब
0: जी सर,
1: गुल सफीना साहब, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, खतौकी शाह, तारिक भट्ट, आसिफ रियासत, अमजद कीम भट्टी, महबूब इलाह, कामरान शहजाद, नीम भाई, अब्दुल कयूम, परवेज साहिब, मुगल सफीला साहब, खालिद भट्टी, शरफद्दीन भाई और तारिक जुल्फी भाई को बहुत बहुत असलाम। आज मुलाकात हुई उनसे, छोटे पीर साहब, शकीर साहब, चौधरी महमूद साहब, चौधरी फरियाद साहब, अमीदा साहिबा हैं, सादिया बहन हैं, गजाला साहिबा हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, अतीका साहिबा हैं और शोजी तारिक हैं, हाजी अयूब साहब हैं, शकील साहब हैं, मेरे ख्याल पहले नाम ले लिया, अंसर महमूद चमामूरी हैं, मेहरबान साहब हैं और जितने भी दोस्त हैं सुनने वाले
0: आने एक वाले एक बंदे ने जनाब पहले फोन करके मुझे कह दिया था कि ऑन एयर जो है 3 लोगों का उन्होंने मुझे कहा था सलाम देना, नहीं 4 लोगों, एक आपका, आपको, एक अयूब चौहान को और एक चौधरी फरियाद साहब को, एक गजला जबीन बहना को, वाजिद भाई, वाजिद भाई,
1: वाजिद साहब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: जी जी
1: और अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, वही जो बीमार हैं।
0: आमीन आमीन। जी जी थोड़े
1: और वो ओल्डम वालों को भी बहुत बहुत अस्सलाम।
0: जी
1: और जरा बच के घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा,

मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, हो टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला। मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। पचना हो जाने वाले मैं तुझ पे वारी, ओ बैंड जी जरा बच के पचना।

रोता फिरेगा घर वाला, फिरेगा घर वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला, मेहनत मजदूरी करूं झुकना ना जानू, और यार जी जरा रास्ता छट के हाँ, मेहनत मजदूरी करूं झुकना ना जानू।

0: उड़ा पिशौरी मेरा, संगा लाहौरी मेरा, बैठो मियां जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला।
1: वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात, बहुत खूब जी। लगता है कि ये गागा रफी साहब का है और सुनील दत्त जो हैं वो मेरे ख्याल में
2: प्यार का बंधन,
1: हाँ उसमें कर रहे हैं
2: मोहम्मद रफी साहब,
1: बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जावेद मीर भाई, ढेर सारी तालियां उनके लिए जनाब, और तालियों की गूंज में ही खुश आमदीद वेलकम जी अनु कहेंगे अनम जी को। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनन कैसी हैं आप?
3: जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आप ठीक?
1: दुआ चाहिए, दुआ चाहिए
3: जी, जरूर। अच्छा वो मैंने गाना प्ले करवाना था अपनी सिस्टर के लिए।
1: ओए होए होए होए, अनम आप लगता है सुनती नहीं है प्रोग्राम। ये आवर जो ये जो आवर है ना, इसमें कोई डेडिकेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होते हैं, और इसमें लाइव कॉल्स में ये होता है कि आप या तो शायरी करें या फिर कोई गीत गुनगुनाएं। तो आप बताएं, मुझे शायरी करेंगी या गीत गुनगुनाएंगी?
3: नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ गाना प्ले करवाना था, मुझे नहीं पता। ओए
1: होए क्या बात है। आपकी सिस्टर का क्या नाम है?
3: मेरे सिस्टर का नाम है सुमैया।
1: सुमैया, तो चलिए अगर बीच में मौका मिला तो जरूर आपके लिए लगा देंगे, ठीक है ना?
3: अच्छा सा ना 90s का लगाइए।
1: ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना?
3: अच्छा सा,
1: ओके अनम, यू टेक केयर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
3: ओके बाय
1: बाय। और अनम को नहीं पता था कि ये डेडिकेशन नहीं है अभी, तो चलिए जनाब अभी कोई है नहीं है मौजूद, तो चलते हैं। अनम अपनी बहन सुमैया के लिए गीत सुनना चाहती है, चलो गाना ही लगा देते हैं, कोई आता है जब तक?
3: जी

0: नाड़ी फिल्म से लिया हुआ गीत कमाल सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में पेश किया, क्योंकि अनम साहबा ने कहा कि वो अपनी बहन के लिए गीत सुनना चाहती हैं और 90s का कोई गीत सुनना चाहती हैं। तो उम्मीद रखता हूँ उन्हें पसंद आया होगा। और क्योंकि बड़े अरसे बाद ये वेंसडे का पहला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों को पता नहीं कि मैं प्रोग्राम शुरू कर चुका हूँ, तो इस वजह से आज दोस्त नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आज धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगर कोई आया तो लाइव कॉल ले लेंगे, नहीं तो फिर आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे कमर्शियल के बाद। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
1: 24 hours a day. Sunrise Radio. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
5: My favourite radio station, Sunrise Radio.
6: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तालियों की गूंज में खुश आमदीद वेलकम जी अनु कहेंगे चौधरी फरियाद साहब को। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी सुनियो,
0: मैं तो सोचा थोड़े पैसे बचाए सन, तो मैं क्या मेरे यार नू शायद कुछ चंगा नहीं लगा, तो मुड़ के कोई नहीं आए।
1: नहीं, पैसे नहीं कोई नहीं होने, ऐसे नहीं क्या होना कि उन्होंने तुम सुनी ना सकने। फिर जरा ना पहले तो होना, चलो कार मिलेगी तो ठीक है, तो फिर बाद जरा ना
0: दो तीन हफ्ते गुजरन गए, सारे नु पता लग जाएगा कि वापस बंदा आया हुआ है, तो फिर बिजी होना ही है फिर। जी जी
1: सही है। चलो पापा
0: सुनाओ, तुसी जी तुसी सुनाओ की हाल चाल ने।
1: हाल चाल ते जिसन फिसन ते ठीक है, ते वैसे थोड़ी सेहत माड़ी है, मतलब डॉक्टर भी हुण उतना नहीं दे रहे हुण, क्या करिए। चलो
0: अल्लाह बेहतर करेगा जनाब, अल्लाह बेहतर करेगा।
1: जी जी
0: अल्लाह बेहतर करेगा
1: जी, जितना उसने रजा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ते होना था कि तुसा ना शेर बनने दे जाज पुली गई।
0: चलो दो महीने बाद ही वापस आया ना, इतना टाइम ते नहीं होया जनाब।
1: चलो अल्लाह ख्याल करे।
0: जी जी
1: चलो सलाम दुआ करने आ, मैं पता कोई नहीं ना हुण साडा इधर
0: अल्लाह तबारक ताला तुहाडे हालां ते रहम करे ते उन्हां नूं शर्म दिलाए। जी
1: चलो जी,
0: अल्लाह दिलाए उन्हां नूं।
1: जी जी मैं सलाम दुआ करने आ, सब तों पहले अतीका बाजी ने, नुशीन जी ने, ते रज़ाला बाजी ने, सीमा जी ने, इन्हां नूं मेरा बहुत बहुत सलाम। परवेज भाई ने, महबूब राय साहब ने, अमदस्तर साहब ने, अजी सलीम साहब ने, और चौधरी मनीर सिंह चक्की वाले ने, शकील भाई ने, हीरा भाई ने, वाजिद भाई ने, अयूब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, अब्दुल कयूम भाई ने, नहीद राणा साहब ने, और जनाब तारक भट्ट साहब ने, और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब ने, रियासत रियासत साहब ने, चौधरी रुखसात साहब ने, अहम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, इन्होंने दोस्तों की और भी सारिया दोस्तों आसम
0: दी सेहत बहुत खराब है, बस उन्होंने वास्ते दुआ करो, काफी सेहत खराब है।
1: अल्लाह पाक उन्होंने सेहत दे। मेरे
0: को नंबर कौन है, चलो पता करना के
1: हाल
0: है। मैं सलाम पहुंचा देंगा जनाब। बड़े किस्मत आले असि, बड़े चंगे प्यारे बंदे नाल साडा वास्ता है। जी
1: सही गल है, सही गल है। मैं मतलब रखिया सी मेरे नाल हर कोई चंगा।
0: हां
1: बिस्मिल्लाह करा
0: जी।
1: चलो चाहते चार दसने महफिल नजर करने, बिस्मिल्लाह करा लिखने ने के माफ करें अल्लाह बख्शन आ रहे तू।
0: वाह सुभान अल्लाह।
1: माफ करें अल्लाह बख्शन आ रहे तू, अपनी गलतियां ते शर्म सारा मैं। दिन रात रहंदा मेरे दिल अंदर डर, कीतियां दा खताकारा मैं।
0: वाह सुभान अल्लाह।
1: खा खा ठोकरा आखर आन चखा, तेरे दर साइया ओ गुनगारा मैं, रखी उमद रसूल दे विच मौजी, तेरिया रहमतां दा तलब गार आ मैं।
0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
1: ए मजाज ने रंग लिखने ने के एस इशक प्रेम दे विचो क्या खटिया। एस इशक प्रेम विचो क्या खटिया, लगिया ठोकरा और दुखियारिया नू, इधर सोने नहीं निगाह कीती।
0: वाह
1: इधर सोनिया नहीं निगाह कीती, असि लभदे रे सहारिया नू। आया कान अजे पैगाम लेके, असि तकदे रे मनारिया नू, मौजीजारियां कर कर उम्र गुजरी, आया तरसना सजना प्यारिया नू।
0: वाह वाह चौधरी साहब।
1: ये लिखने के चुप चुप के तीर चलान वाले, चुप चुप के तीर चिरान वाले आके आमने सामने मार छोटा बगल गिरता के दिखना नाल तेनो मेरा दिल कीता ही तार तार छोटा।
0: वाह क्या बात,
1: कदी इधर तकना है कदी उधर तकना है दिल जार ना मार बार बार छोटा
0: होय होय
1: जखम अंदर ही मोजी जखम अंदर ही मोजी ना बार जिसम किते अंदरों अंदर रफ्तार छोटा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ क्या बात क्या बात,
1: तेरा अपने के रखिया जिन्ना नो रखिया जिन्ना नो लाके नाल सीने आज जल्दी मार तलवार गेनी
0: हाय हाय
1: जांदी वार ना तकिया परत पीछे आके तीर कलेजे विच मार गेनी।
0: वाह वाह वाह,
1: जांदी वार ना तकिया परत पीछे ऐसे तीर कलेजे विच मार गेनी खेडन वाले दिलां नु लुक देके
0: ओहो
1: खेडन वाले दिलां नु लुक देके वागा चुप समुद्रों पार गए नी मोजी मोजा भी लै गए नाले अपने
0: होय होय
1: मोजी मोजा भी लै गए नाले अपने और पाके लंबी जुदाई दे हार गए।
0: वाह वाह,
1: अखिया सारी जिंदगी रखी हो डीक तेरी
0: हाय हाय
1: मेरी टोक वाले फेरा पा दिल भर फसी बहरे तूफान दे विच कश्ती आके रा मौला बनने ला दिल भर। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਦੀਦਾਰ ਜਾਵੇ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਦੀਦਾਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਚਾ ਦਿਲ ਭਰ
0: ਆਹਾ
1: ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਜੀ ਅਰਮਾਨ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾ ਵੇਲੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦਿਲ ਭਰ।
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ।
1: ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤ ਰਹਾ ਹੈ
0: ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ।
1: ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀ
0: ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
1: ਇਹ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
0: ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ।
1: ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲੋਂ
0: ਓਹੋ
1: ਹੋਈਆਂ ਮੁਦਤਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਬਲ
0: ਹਾਂ ਹਾਂ
1: ਹਾਂ ਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਗ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਦੂਰ ਆਬਾਦ ਬਾਬਲ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਲਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਲਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਹੁ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਬਾਬਲ ਮੋਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਵਸੋ ਮੋਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਵਸੋ ਮੇਰਾ ਲੱਭਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਭਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਸੀ ਇਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਲ।
0: ضرور ضرور ملیں گے بہت شکریہ سر بہت مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ یہ تھے جناب چوہدری فیاض صاحب اس وقت پاکستان کشمیر میں موجود ہیں ڈیڑھ سال تعلیم ان کے لیے اور دوستو اب تھوڑی دیر کے لیے یہ سسٹم یہاں روک لیتے ہیں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے ظہر کی اذان کا تو چلیں گے سنیں گے ظہر کی اذان اس کے بعد دوستو آپ سے ملتے ہیں سنتے رہیے گا سنگ سنگ رہیے گا اپنے من پسند سن رائز ریڈیو کے سنگ
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो चलते हैं पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:46, यानी कि 46 मिनट पास्ट 1, तो चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.
3: My favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ ही जाता है, लेकिन क्या है कि कॉल ले लेते हैं। राणा नवीद साहब की स्विट्जरलैंड से इनकी कॉल ले लेते हैं और बड़े लेट आए, चलिए देर आए दुरुस्त आए। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: सच कहा इश्क में नुकसान तो दोनों का हुआ।
0: हो हो।
1: सच कहा इश्क में नुकसान तो दोनों का हुआ, मेरी उम्र गई और तुम्हारे कुछ दिन।
0: हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है।
1: चंद्रशाल अहमद खलील साहब की भी, कहने को सिर्फ आंख का पानी है दोस्तों।
0: वाह जी वाह,
1: वरना हर एक अश्क कहानी है दोस्तों।
0: हाय हाय,
1: कहने को सिर्फ आंख का पानी है दोस्तों, वरना हरे कश्क कहानी है दोस्तों। ऐसे हमारे खून के प्यासे हैं यार लोग, ऐसे हमारे खून के प्यासे हैं यार लोग, जैसे हमारा खून भी पानी है दोस्तों।
0: होए, क्या बात है, क्या बात है।
1: और हमसे हमारा जश्न मनाया ना जा सका।
0: वाह वाह,
1: तुमने हमारी याद मनानी है दोस्तों।
0: होए होए,
1: और दिल ने हमारी एक ना मानी तो क्या हुआ, हमने भी दिल की एक ना मानी है दोस्त।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: और शेर ने कहा भाई कि दरिया में एक आस का तिनका ही डाल दो, दरिया में एक आस का तिनका ही डाल दो, एक डूबते की जान बचानी है दोस्तों।
0: हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है सजनों।
1: और आखिरी शेर है कि एक बार ले चलो दिले खाना खराब तक, बार ले चलो दिले खाना खराब तक, मलबे से उसकी याद उठानी है दोस्त।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात।
1: मलबे से उसकी याद उठानी है दोस्त। भाई मेरा ख्याल हाजिर हो गई, तुम वेलकम बैक। अल्लाह पाक
0: तुम्हें
1: सलामत रखे, खुश
0: रखे।
1: बहुत शुक्र,
0: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप आए, कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शमूलियत की, इतनी अच्छी शायरी की और हमारे लिए भी प्यारे से अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह आपको सलामत रखे,
1: बड़ी मेहरबानी, दुआ में याद रखिए
0: अपना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब राणा नवीद साहब के लिए, स्वीडन से इन्होंने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ोन करने का। और दोस्तों मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी, तो तब तक के लिए दोस्तों आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह नेकबान एंड गुड बाय।

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
3: लो जी प्यारे हो, मैं ते जगमोहन जी एक दूसरे नु गालो गाली होन लगे हैं।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं दीप साहब, गाना नहीं, सिचड़ियां ने। सियाणियां ने कहे है वे गांव दियां दियां ता सिचड़ियां।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

यूजलेस। ओके।

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: to be all you listeners. Salaam namaste.
1: Salaam namaste. कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
2: Always Khan.
3: हम शरीफ क्या हुए?

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 FM। आपका होस्ट दोस्त यहाँ पे हाजिर है, मेरा नंबर भी आम ही है थिल एलम और बीरी शाम और आप सबके नाम रंग महफल का प्रोग्राम है। ऑन टुडे इज अमेजिंग डे एज यू नो टुडे इज द 5th of August 2026। द वेदर हैज बीन लवली डबी रोमांटिक मौसम है। कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, व्हाट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, योर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो 100.6 FM 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। और वेरी वेरी सून वी गोना बी लॉन्चिंग ऑन Derby एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सुनरी ऐप ऑन Apple Play Store ऑन Google Play Store एंड नो फॉरगेट www.sunriseradio.fm एंड www.sunrise.radio। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार है, उनके लिए दुआ को हूँ और हमेशा ही हम आपके लिए दुआ करते हैं। और ज़िंदगी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, ब्यूटीफुल पीपल, और सब हमें याद कर रहे हैं, अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा आपके साथ मिलकर के और आपके साथ बैठ के भी, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के साथ मुलाकात भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का और तय दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ ममनून माँ का। और यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी क्या करना है कि यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे कम्युनिटी जी कह रहे हैं कि ब्रेक कर लें पहले, और ब्रेक के बाद हमने हिट ऑफ द आवर पेश करना है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आर्ट ब्रेक काफ़ी लंबी थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पहले हमने आर्ट ब्रेक करनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे सिलसिला शुरू करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी 01274306 पे लाने काफ़ी चमक रही हैं, दमक रही हैं, आई एम लॉट ऑफ कॉल्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई एम गेटिंग हाई वॉल्यूम कॉल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लाइनें मिस भी हो चुकी हैं, आप मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे, आई विल आंसर योर ऑल योर कॉल्स। और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड।
1: Apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group, quality homes from a landlord you can trust.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
4: Sunrise and music. Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: Right, that was a beautiful track. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे दोस्तों का. और मैं यहाँ पे मैं क्या करूँ क्या करूँ और यहाँ पे और अभी तो टाइम काफ़ी है. और मैं यहाँ पे देखो हमें कंप्यूटर जी हमारे जो ना अभी हमें शो कर रहे हैं और कोई और होता तो वो प्ले कर देता. चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारा भाई है और हम उसके भाई हैं. चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मुझको खुश रखे, शाबाद रखे. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच आप हमारा साथ दे रहे हैं. तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर को सेट करना है जो जैसे हम चाहते हैं उसको करेगा. और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक.
1: Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio, 24 minutes past the 18 UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Pavis Khan. Bobo Shukri, aap sab doston ka jo mera saath de rahe hain. Aur sab to pehle call aayi hai hamare mohtaram bhai dost, jitni ki main tareef karun, kam hai hamare Ladla ji hain. Aur Ladla ji, ye hamare Chaudhary Faryaz saab hain. Bobo Shukri, mere bhai ka aane wala geet main aapke liye pesh karunga. Mujhe umeed hai ki aap enjoy karenge. Bobo Bobo Shukri, aapka bhi thank you very much ki aapne hamara saath de rahe hain. Aur aane wala geet main aapke liye pesh karunga. Aapki taraf se hoga hamare किदन भाई हैं, सुमित्रा जी हैं, नशीन साहिबा हैं, अतिका साहिबा हैं, उनके लिए गीत होगा. और अब्दुल कयूम साहब हैं, उनके लिए भी गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. तारिक जुल्फी साहब, आपके लिए भी गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. वी हैड लवली कॉल फ्रॉम हमारे किदन भाई, हमारे पापी जान सुमित्रा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और अतिका साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और जो बाकी के कॉलर्स हैं जिनकी मिस हो चुकी है, आप दोबारा फ़ोन करेंगे. आई विल मैंशन यू ऑल योर नेम इज़ वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आने वाला गीत में आपके लिए पेश करूंगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ हो गई थी और इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूं कि सबकी कॉल को आंसर करूं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे. और थैंक यू वेरी मच. और बहुत अच्छा लगा. और आपका भी चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप भी हमारा साथ दे रहे. और राणा नवीर साहब, ये गीत आपके लिए होगा और आपकी पूरी टीम के लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का. आप आए और बाहर आ गई है और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. एंड थैंक यू वेरी मच ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर जो मुझे याद कर रहे हैं. और रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए भी होगा. बिल्लो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का, हौसला अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा. मुझे उम्मीद है यकीन आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी.

0: right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक करेंगे निक्की जी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद है बहुत खूबसूरत गीत आने वाला गिंदन भाई आपके लिए होगा और हमारे पापी जानिश मित्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपके लिए भी गीत होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच और यहाँ पर छोटी सी ब्रेक
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है यॉर्कशायर मैनचेस्टर ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043
0: Right, welcome back और moving on to another beautiful track और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी गिदन भाई आपके लिए होगा हमारे पापी जन स्मित्रा जी ये गीत आपके लिए होगा राय अजर फ्रेंड्स स्कॉटलैंड में प्रोग्राम सुन रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये गीत आपके लिए भी होगा साजिद भाई फ्रॉम शफील से हैं साजिद भाई फ्रॉम ग्लासगो से हैं साजिद और सैन साहब हैं साजिद पलवान साहब हैं ये गीत आपके लिए होगा आई होप यू गन एन्जॉय द ट्रैक एज वेल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा अधिका साहब हैं ये गीत आपके लिए भी होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे बहुत खूबसूरत गीत है और ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स और हमेशा मैं कहता हूँ राज में भी कहूँगा और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है इसको ज़िंदगी को इन्जॉय करें और अच्छा सोचें अच्छा खाएँ अच्छा समझें अच्छा लाएँ और पाएँ और जो भी है और ऐसा ही है होना चाहिए और शुक्रिया करता हूँ मैं जिन दोस्तों के साथ आज मुलाकात हुई रोस्टेल में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच आज हम हमारे चौधरी फ्रियाज के भाई के शहर में थे और चौधरी फ्रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके दोस्तों के साथ मुलाकात हुई है बड़ा ही अच्छा लगा माशाल्लाह बड़े ही अच्छे इंसान हैं बड़े अच्छे जिनके साथ मुलाकात हुई है बड़े ही प्यार करने वाले हैं माशाल्लाह और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा और आपके दोस्तों के नाम होगा उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया ये गीत आपके लिए होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मेरा साथ दिया और हौसला अफजाई की है ये गीत आपके लिए भी होगा और मदरसा कियानी का भी गीत आपके लिए भी होगा एफ रहमान का भी गीत आपके लिए होगा इंजॉय द ट्रैक

That was a wonderful tune, one of my favorite tune. Moving on to another beautiful track. Sara ji, bahut shukriya aapka, aapne hame yaad kiya. Bahut shukriya phone karne ka, uzr afzai karne ka, duaon ka bahut shukriya. Ye geet main aapke liye pesh karunga. Bahut shukriya aapka bhi. Simi ji, bahut shukriya aapka bhi aur aapki puri family ke liye. Mujhe umeed hai yakeen hai ki aap enjoy kare. Nashin sahab, bahut shukriya, aapne itni duaen di hain hamare Chaudhry Firyaz sahab ke liye. Aur Shahpari ji hain, Zulekha ji hain, bahut shukriya aapka bhi. Fazana ji hain, bahut shukriya, ye aapki taraf se hoga hamare Chaudhry Firyaz sahab ke liye hoga. Mujhe umeed hai yakeen hai ki wo enjoy karenge. Bahut shukriya aapka bhi aur aapki puri team ko hum salaam pesh karte hain. और ये गीत मैं आपके लिए भी पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन है इस गीत को आप एंजॉय करेंगे. दिन भाई सुमित्रा जी, ये गीत आपके लिए भी होगा. और अजीत कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन है आप एंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. राणा नवीद साहब हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा. राणा साहब, ये गीत जो आने वाला गीत है, स्पेशली गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं. मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप एंजॉय करेंगे. थोड़ी देर रेडियो को हो रहा जो, या रेडियो की आवाज ऊपर कर लो. ये जो मेरा फेवरेट गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, दिल पसंद गीत है, मेरा फेवरेट गीत है. और क्या गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है और बहुत अच्छा लगा. मेरे छोटे भाई साहब हैं, छोटे पीर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप मेरे वाला साथ दे रहे हैं, आपने सलाम पेश किया सब सुनने वालों के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा. और मेरे मोहतरम हैं, भाई हैं, मनीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गाना आपके लिए, मेरे मोहतरम, ये गीत आपके लिए. मुझे उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है और इस गीत को क्या कहेंगे, जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है. और बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो ना, आपने जो लाइंस हैं इसको आपने सुननी है और जो इनके जो बोल हैं वो आपने सुनने हैं. बड़े ही खूबसूरत, बड़ा ही नायाब. और ये वो गीत है स्पेशली राणा नवीद साहब आपके लिए. बिल्लो जी, ये गीत आपके लिए. मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत खूबसूरत गीत है. इंजॉय.

0: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया. कैनाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. Thank you very much आपने जो फ़ोन किया और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं और गानों को पसंद कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. पहली दफ़ा आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतनी दुआएं दी हैं और बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने पूछा कब मैं प्रोग्राम करता हूँ. I do program on Wednesday between hours of 8 and 11 and Sunday between hours of 8 and 11. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ भी हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. और बहुत अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, time in the studio is 43 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the Parviz Khan. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमें अच्छा लग रहा है कि चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्नर हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. हमें अच्छा लगा आप ही हमारा प्रोग्राम सुनती हैं और सुन रही हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमारी प्यारी बहना है गजा जबीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको सलाम पेश करें. हमारे वाजिद भाई हैं, आपको सलाम पेश किया उन्होंने. सब सुनने वालों को उन्होंने सलाम पेश किया है. स्पेशली हमारे राना नवीर साहब को सलाम पेश कर रहे हैं. हमारे किदन भाई हैं, सुमिता जी हैं और चौधरी फरियाज साहब हैं उनके लिए. और उन्होंने हमें याद किया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. और हमें अच्छा लगा उन्होंने सलाम पेश किया सब सुनने वालों को. स्पेशली अब्दुल कयूम साहब आपको भी हमें उन्होंने याद किया है. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. यहाँ पर छोटी सी नन्ही मनी ब्रेक होगी, ब्रेक फ़ौरन बाद है. आई एम गोना प्ले फॉर यू फ्लैश बैक होगा, गीत होगा. इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद अ केयर, इफ इन आउट अबाउट स्टिक अराउंड विद सन रेडियो 103.2 FM. And if you're thinking, right, who's on the radio, it's Parviz Khan. Our bahut bahut shukriya aapka bhi. Aur thank you very much. And once again, thank you to the beautiful callers jin doston ne mujhe phone kar chuke hain, kar rahe hain. Unka main shukr guzar hoon, mamnoon unka. And thank you very much for all those valuable time, kimti waqt mujhe de rahe hain. Bahut bahut shukriya aapka bhi.
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio. Sunrise and Music.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Wow, what a beautiful track. That was one of my personal favorite गीत और क्या कहेंगे और ज़बरदस्त गीत था और रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच मिस्टर मिसी पटेल आपने हमें याद किया थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बर्मिंघम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच आपने सलाम पेश किया सब सुनने वालों को स्पेशली हमारे किदन भाई हैं अंशमित्रा जी हैं और कह रहे हैं कि हम इंतज़ार में हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच और आने वाला गीत आपके लिए भी होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे वाजिद भाई हैं आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई और हम दुआ को हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं और आज भी हमने दुआएं की आपके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच और यस बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दें बहुत बहुत शुक्रिया और राणा नवीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और चौधरी फरियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लग रहा है कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं और एक और खूबसूरत कॉलर हैं और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और बहुत बहुत शुक्रिया सितारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपने सब सुनने वालों को सलाम पेश कर रहे हैं मैं करने वाले को मैं सलाम और बहुत शुक्रिया आपका भी आप ही हमारा साथ दे रहे हैं और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा सितारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये गीत आपके लिए भी होगा और बिल्लो जी ये गीत आपके लिए मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे बहुत खूबसूरत गीत है सिमी जी हैं आपके लिए भी आपकी फैमिली के लिए होगा और हमारे मोहतरम हैं वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आपकी दोस्तों के लिए नाम होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही हमें फ़ोन करते हैं उजरा अफजाई करते हैं दुआएं करते हैं हमारे लिए और इरम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच शहजादी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे चौधरी साहब हैं एक बर्मिंघम से आपने हमें याद कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और छोटे पीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैं आपको भूला नहीं मेरे भाई आपका भी शुक्रगुजार हूं ममनून हूं आपका और आने वाला गीत मैं पेश करूँगा वाजिद साहब की तरफ से होगा चौधरी आशरफ रज साहब हैं चौधरी फरियाज साहब हैं परवेज खान हैं महबूब लाई साहब हैं तारिक जुल्फी साहब हैं जवेद मीर साहब हैं तारिक भट्ट हैं शकील साहब हैं इराजी हैं आमिर शहजाद साहब हैं चौधरी अहम उस्मान हैं शफीउल्ला हैं वाजिद भाई फ्रॉम उनके लिए भी होगा स्पेशली और उनकी दोस्तों के लिए होगा और अयूब जवान साहब हैं और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं शफुद्दीन हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं अतिका साहिबा हैं महमूद रफ़ी साहब हैं जंगीर फ्रॉम ज्यूजबरी हैं ये गीत आपके लिए भी होगा वाजिद भाई आपके लिए और आपकी दोस्तों के लिए होगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे ठीक है और इनमें आपका दो दफ़ा नाम आ चुका है वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा और आपकी दोस्तों को हम सलाम पेश करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और ये गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ बड़े दिनों के बाद मैं गाना पेश कर रहा हूँ बड़ा ही नायाब गीत है बड़ा ही खूबसूरत गीत है मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी मौसीकी हो अच्छा गाना हो अच्छा लिखाई हो और मौसीकी भी अच्छी होनी चाहिए लिखने वाले भी अच्छे होने चाहिए और क्या कहेंगे और बहुत ही खूबसूरत गीत है और हमें अच्छा लगेगा कि आप ही इंजॉय करेंगे और समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक और ऑल दोज यूनिक कॉलर्स आउट देयर और सब के लिए होगा और मैं हमेशा में कहता हूँ और दोबारा मैं कहूँगा ज़िंदगी खूबसूरत है इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा देखते हैं ज़िंदगी को और इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर ब्यूटीफुल आइज और योर ब्यूटीफुल जो कान हैं जो सुनाते हैं आपकी वो कैसा सुनते हैं और अच्छा सुने अच्छा समझें और सोच को बदलें सोच जो है ना उसको बदलें और खूबसूरत सोच को बनाएं कि दुनिया में चले जाए ना तो दुनिया आपको याद करे ठीक है बड़े बड़े यहाँ से चले गए बड़े बड़े दुनिया से चले गए और उनके लिए भी हम दुआ को हैं हाँ दुआ की बात में हो रही है तो हमारे मोहतरम रुखसार भाई हैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया वो माशाल्लाह माशाल्लाह बगदाद शरीफ में गए हुए हैं उन्होंने दुआएँ की हैं सब के लिए दुआएँ की हैं इंशाल्लाह जल्द वो वापस आ जाएंगे और ये दूसरा हफ्ता है वो वहाँ पर हैं माशाल्लाह उनसे भी बात हुई है और बगदाद शरीफ में माशाल्लाह और हमारे लिए दुआएं की हैं सबके लिए सुनने वाले के दुआएं की हैं और मोहम्मद नीफ साहब आपके लिए भी दुआएं की हैं उन्होंने और जो बीमार हैं उनके लिए खसूस उन्होंने दुआएं की हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमारा साथ देने और टाइम निकाल के माशाल्लाह आपने हमारे साथ एक शेयरिंग की है माशाल्लाह और बड़ा ही अच्छा लगा और अभी आपने भूले नहीं हैं तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब आपके लिए भी खसूस उन्होंने दुआएं की हैं बहुत शुक्रिया आपका भी और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ इन्जॉय द ट्रैक

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और बहुत बहुत शुक्रिया सब दोस्तों को जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त बाब हैं। दैट वाज द हिट ऑफ द आवर। और राणा नवीर साहब, आई डू अपोलोजाइज टू यू, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आपको मौका मिले आप दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना, कोई गलती साड़ी नहीं है। और मेरे ख्याल में आपके साथ कोई मसला हुआ है वहाँ पर, तो आपने दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, हम आपका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहां पे हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, I tell you, the studio is 13 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Pav is Khan. Yeah, we have a short break. Break, Nikki ji, break. Baad hai, humare ladle aage hain, ladle aage hain aur chha gaye. Kasam se, kya kehne, kasam mein.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group, quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर्स और लिसनर्स टू रेडियो। और यहाँ पे हमारा साथ है हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त नदीम मंसूर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक का करम।
0: माशाल्लाह, माशा करम हमेशा ही रहे आपके साथ मेरे भाई, और हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं माशाल्लाह। और आज हमारे लिए क्या लेके आए?
1: एक गीत है मोहम्मद अजीज साहब ने उसको
0: हाय गुनगुनाया। वाह जी वाह, क्या कहने, वाह जी वाह। एक दौर में मोहम्मद अजीज साहब बहुत मशहूर मकबूल थे माशाल्लाह, क्या बात। अल्लाह ताला उनके माशाल्लाह उनके लिए दुआ को हैं, उनके लिए अल्लाह ताला वो जन्नत फरदौस में आला मकाम दे।
1: आमीन
0: जी, आमीन।
1: तो वही गीत और चंद नए अशआर हैं उसके।
0: हाय हाय हाय, क्या कहने।
1: तो वो आपकी नजर, सबकी नजर।
0: माशाल्लाह, क्या बात। और ये हमारी तरफ से आपके लिए सर। जी हजूर,
1: शुक्रिया। अपनी आंखों के सितारों में छुपा ले।

0: वाह मेरे भाई, कमाल कर दिया, कमाल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गीत। और बड़े दिनों के बाद ये मैं गाना सुन रहा हूँ, और वो भी आपकी आवाज़ में, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में ये गीत नहीं है। और बड़ी खूबसूरत मूवी भी है, और पता नहीं एक ही गाना है उस फिल्म का, और वो फिल्म नहीं है, गाना नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल में आपको पता है कि यहाँ पे वो गाना नहीं है, इसलिए आपने गुनगुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा ही आप कमाल करते हैं, और आज आपने कमाल भी कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए बहार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतर नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, जो इन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतर, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है, यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: माशाल्लाह, वेलकम जी, अनु खुश आमदीद है, सत बिस्मिल्लाह, आप हवा के दोष में जी।
1: ओ सदके सदके, बड़ी मेहरबानी सर,
0: माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने होल किया।
1: अल्लाह
0: पाक का शुक्र शुक्र शुक्र, मौला दा करम करम कर, आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए।
1: बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।
1: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम, सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिन के जिन पे हमको नाज है, वही जिन पे सारे सनराइज रेडियो को नाज है, परवेज खान जी आप ही की तो वो आवाज है।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या कहने,
1: दिल बाग बाग हो गया,
0: दिल मेरा बाग बाग, गार्डन गार्डन हो गया, चश आगे जी, वह क्या कहने, वाह।
1: और हमेशा की तरह फरमाइश करने वाले हैं परवेज खान, आप मुबीन
0: जी,
1: साहिल, डॉक्टर सागर
0: जी,
1: डॉक्टर बशर पासा, डॉक्टर हिम्मत कुमार, नर्स फरजाना, जावेद गुरु भाई, बाबी सेबा, सिमी बहन
0: जी,
1: और जिन साहब से कल मुलाकात हुई थी, अमजद साहब
0: जी जी, और माजिद भाई,
1: माजिद भाई राजा
0: जी जी, माजिद भाई।
1: कोई और दुनिया में तुम सा

0: और दुनिया में तुम सा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अदा ये नजर ये किसी में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। बुराई तेरी जो जमाना करे, बयां कोई झूठा फसाना करे, उठाए वो कसमें हजारों मगर, यकीन कैसे तेरा दीवाना करे, भला इस जमाने का कोई यकीन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
1: वाह।

नाम क्या महजबी है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, कोई और दुनिया में तुमसा नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, अदा ये नजर ये किसी में नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर।

से कटे गी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग है, तारे फलक पे यूं

0: Ja.
1: क्या कहें
0: सर जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी मेहरबानी,
1: बड़ी मेहरबानी आपकी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर,
0: आप
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे मोहम्मद रफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Right, time in the studio, 45 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep electronic with the power of his gun. Bobby Shukriya, aapka bhi, aapne mara saath dene. Thank you very much. Aur yahan pe hamara saath dene, hamare mohtaram, hamare bhai, Guruji hamara saath dene. Aur yahan pe, aur usse pehle humne chhoti si break karenge. Break ke foran baad, ek minute ki break hai, usse baad, aur Guruji hai, hamare paapi jaan hai, aur dhamaka hoga, dhamaka hi dhamaka hoga. Sunrise Music.
3: Teri
4: Matches.
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Sunrise and music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
1: Right, welcome back, listening, you're listening to Radio 103.2 FM, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, ये हैं हमारे अपने, हमारे दिल जानी हैं और गुरु जी हैं, वेलकम कहेंगे, जियाँ कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्ला कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी मेरे भाई की?
0: बस एकदम ठीक ठाक। अपना मोहम्मद रफी साहब आ गए, मुझे आ गए।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वो आपके बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए, उन्होंने आपके लिए गाना सुनाया।
0: अच्छा
1: जी जी,
0: मैंने नाम सुना, उसने बोला था।
1: जी जी जी, आपके आपके लिए हमेशा ही सुनाते हैं गाना, आपके लिए, भाभी जान के लिए भी हमेशा ही वो आपके लिए गाना गुनगुनाते हैं। जी
0: जी,
1: बाकी इसमें कुछ शक नहीं। जी जी,
0: तो सबसे पहले हमारा शकील भाई बंडली वाले
1: जी,
0: जावेद मेहर भाई
1: जी,
0: जावेद मेहर भाई, मोहम्मद हनीफ भाई
1: जी,
0: राजीव भाई, वाजिद भाई
1: जी,
0: हमारा लाला उस्ताद,
1: लाला उस्ताद फरियाद भाई जी जी, फरियाद भाई, फरियाद भाई क्या बात उनकी, वाह।
0: सजद पहलवान भाई, इकबाल भाई, पापा शफीक, डॉक्टर मनीष साहब
1: जी,
0: मोहम्मद रफी साहब
1: जी,
0: उसके बाद हमारा परवेश खान भाई,
1: हमारी
0: बहना समीना खान
1: जी,
0: आशिया जी, अतिका जी, अतिका जी आएगी, मेरा ख्याल लेट से है, लेट हो गई आज
1: जी,
0: सनीना जी है, सिमी जी है, रेखा जी, नमीना जी, सीतारा जी, मिसेस पटेल, जो जो सुन रहे सब, तो
1: वालेकुम अस्सलाम, और आपका सलाम पहुंचा रहे हैं सिमी जी और उनकी फैमिली आपको सलाम पेश कर रहे हैं जी।
0: अच्छा सिमी जी सुन रही है?
1: अच्छा। जी नहीं, वो प्रोग्राम सुन रहे, हमेशा सुनती है प्रोग्राम।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो ये मैं कुछ एक मंदिर का कुछ गाना,
1: आए हाय हाय क्या गीत आपने सुना रहे हैं, वाह वाह वाह जी जी, गो अहेड। रफी साहब का गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, मकबूल गीत है जी।
0: यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा, कहती है झूमती जाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तुम सब को छोड़ कर आ जाओ यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा कहती है झूमती गाती हवा तुम सब को छोड़ कर आ जाओ मेरे मन की उलझने खुल जाना चाहता हूँ तेरे मन की उलझने खुल जाना चाहता हूँ तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ मन के सुनहरे मंदिर मैं बिताना चाहता हूँ मन के सुनहरे मंदिर मैं बिताना चाहता हूँ यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा कहती है झूमती गाती हवा तुम सब को छोड़ कर आ जाओ तुम सब को छोड़ कर आ जाओ बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है लोहा भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है यहाँ कोई नहीं तेरे मेरे सिवा कहती है झूमती गाती हवा तुम सब को छोड़ कर आ जाओ तुम सब को छोड़ कर आ जाओ थैंक यू
1: ब्यूटीफुल वाह और आपका शुक्रिया अदा कर सिमी जी हैं उनकी फैमिली ने फूल भेजे हैं आपके लिए और हमेशा ही फूल भेजते हैं और आज भी भेजे हैं और बड़ा ही अच्छा लगा माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छा लगा बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी क्या कहें
0: सिमी जी को बहुत बहुत थैंक यू
1: उन्होंने शुक्रिया अदा किया अतिका साहब बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं शमा जी वो शुक्रिया अदा करें और बहुत उन्होंने इन्जॉय किया माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का भी जी बहुत बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू
1: आपका थैंक यू सर और दोबारा आपके लिए और यहाँ पे हमारा साथ है बाबी जान वन एंड ओनली वन बाबी जान
3: हेलो जी भैया
1: हेलो जी बाबी जान हाउ आर यू गुड
3: फाइन थैंक यू भैया
1: मैंने क्या कहेंगे और गुरु जी ने कमाल ही करते हैं गाना गुनगुनाया बड़ा खूबसूरत गाना गुनगुनाया वेरी नाइस आपके इतने फैन फॉलो हो गए इतने आपको याद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं आपके वाह
3: वो हमेशा गाता रहते हैं अच्छा
1: बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत आवाज इनकी बड़ी प्यारी आवाज है चलो बाबी जान आप शुरू कर दें ये ना हो कि देर हो जाए तो फिर वो न्यूज़ ब्रेक आ जाएगी तो फिर आपने थोड़ा सा गाना सुनाया अभी तो फिर आपको नेक्स्ट आवर में लेके जाऊंगा आपने जो जी
3: सबका नाम नहीं देती जितना गिद्दल भाई ने
1: जी जी
3: बोला सबको मेरा सलाम है नमस्कार
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया
3: अतिका जी को सिंह जी को रशिया जी को सबको मेरा सलाम ने हमारा बल्ली वाले भैया ने मोहम्मद रफी भैया
1: हाँ और आपके जो फेवरेट हैं वो भी आगे हैं सईद एहसान साहब जो लंदन से वो करते हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं
3: बहुत बहुत सलाम
1: वालेकुम अस्सलाम वो नेक्स्ट आवर में आएंगे जी जी
3: जी मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं गा लेती हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम का टाइम कम है भाभी जान, आपने वेट करना तो वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट आवर में आ जाए, आपकी मर्जी है।
3: ना ना मैं गा लेती हूँ।
1: जी जी जी जी जी, गो अहेड।
3: मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो,
1: क्या कहने,
3: आवाज न दो, आवाज न दो, इसकी आवाज सुना दे मुझे,
1: क्या कहने,
3: वो साज न दो, साज न दो, आवाज न दो,
1: क्या कहने,
3: खुश नहीं हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख बुलाया मैंने, ये परेशान हूँ मुझे और परेशान करो, आवाज़ दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज़ दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, इश्क दर्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने, चुप गए हो सो मुझे याद भी आया न करो, आवाज़ न दो।

0: Babi Jan, beautiful. इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगाया. Very nice. One of my favorite गीत. नहीं नहीं नहीं, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगाया. Very nice, beautiful. और ये जो गाना है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही नायाब गीत है और बड़ा ही अच्छा लगा. और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गाना गुनगुनाया हमारे लिए, शमीन के लिए. आप तो हमेशा ही याद करते हैं, और ऐसी बात कोई बात नहीं. मैं भाभी जान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमें अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कमाल कर दिया. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. एंड दैट वॉज अ लवली कपल फ्रॉम मिल्टन कीन में हमारा साथ दे रहे हैं. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंसान है, बड़ी ही प्यारे और बड़ा ही खूबसूरत. और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का. और अभी आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमने माय गॉड क्या टाइम हुआ है. ओही होई होई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है. मैं तो इस मैंने पता ही नहीं लगा कि कहाँ चला गया टाइम. एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपका भी हम शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा साथ देने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर और आज हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, और अभी मैं घर जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह. आपको पता है वो कौन है हमारा साथ दे रहे हैं? वो आ गए और छा गए. और सईद अहसान साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है. पता नहीं क्या वजह हुई, आपने ड्रॉप की है या हमारे कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, कि आप मुझे दोबारा फ़ोन कर सकते हैं जब आपको मौका मिले. आपने होल्ड किया हुआ था, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है. तो मेरे ख्याल नज़र लग गई, मेरी अपनी नज़र लग गई. बस क्या करें क्या करें, जैसे हमारे शकील साहब हमेशा ही कहते हैं कि अपनी नज़र है. और ऐसा ही हुआ है मेरे ख्याल में कि यहाँ पे लाइन ड्रॉप हो चुकी है आपकी भी, और सिमी जी आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है. आप ही हमें दोबारा फ़ोन करेंगे जब आपको मौका मिले. आपका भी शुक्रिया अदा करें. सईद एहसान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. राना नवीद साहब आपकी भी लाइन ड्रॉप हो चुकी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब का भी. कीप इट लॉक्ड.
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 10, a former neo-Nazi with previous convictions for anti-Semitism has withdrawn as a Conservative candidate in local elections in Somerset next year. But Reform UK says it beggars belief that Joshua Bonehill Payne will advise the party on radicalisation instead. Labour peer Baroness Berger, who was the target of some of his abuse previously, has called his new role an insult. The Prime Minister's deputy, Louise Hay, says she must be listened to.
3: She was subject to the most horrific racially aggravated harassment, and she's spoken very powerfully about the trauma that she experienced. The judge said it was difficult to imagine a worse case of racially aggravated harassment.
2: A man has appeared in courts charged with murdering a 9-year-old girl from West Yorkshire in Arbroath. Minnie Merriman died from injuries she was found with at an industrial estate early Monday morning. A woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden in central London earlier today. Two have been discharged, while the injuries to the others are described as not life-changing or threatening. The police watchdog, the IOPC, has dropped disciplinary proceedings against the officer who fatally shot Chris Cabba. Martin Blake was cleared of murdering the 24-year-old during an incident in South London in 2022. Temi Mwale from the Justice for Chris Cabba campaign thinks it's a worrying move.
4: It's clear, as there's never been a successful murder prosecution, there's very rarely even unlawful killing verdicts at inquests, that this country is unwilling to really hold police accountable when they use lethal force and when they take people's lives.
2: A Cambridge University professor at the centre of a high-profile copying row has resigned, but he insists we shouldn't see that as an acceptance of the narrative surrounding him. It follows reports claiming Jason Arde had plagiarised parts of his PhD thesis. And Newcastle's head coach has been confirmed as Matthias Yeisler. The German is replacing Eddie Howe, who stepped down last week. That's the latest. I'm Johnny Freeman.
5: Sunrise Radio Network News.
6: Four people have been arrested after police uncovered a suspected drugs laboratory during raids in Leeds. Officers carried out warrants in Adel and Wortley before discovering what

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और यहाँ भी हमारा साथ है, हमारे मौजूद मेहमान हैं, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमारे मुर्शिद हैं, और बड़ा ही अखलाक इनकी माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत है इनकी जो पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत है, बिलीव करें। और सब इनसे प्यार करते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं माशाल्लाह। और यहाँ भी हमारा साथ देने हमारे मुर्शिद हैं, और शकील साहब ऑल वे फ्रॉम बर्ल लंकशायर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकात। जी हजूर
1: जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकात।
0: आपका सब कुछ आपका जी, बिस्मिल्लाह।
1: एक बात जो है ना, वो आप हमेशा फरमाते हैं कि अच्छा पहनो और अच्छा
0: जी,
1: अच्छा खाना क्या है?
0: जो भी जो भी चीज़ है, पक्का पकाया आपके घर में है, वो उसको खाएं, आपको उसको आर्जी चीज़ करें, आर्जी करें, जो भी है, जैसे भी है।
1: अच्छा खाना है वो होता है
0: जी जी,
1: जो आप भूख हो तो खाएं,
0: भूख हो तो खाएं। हाँ, ये एक बात है जी, ऐसे ही है।
1: और खाना ऐसा खाएं फिर भूख रख कर खाएं, आप सल्लल्लाहु
0: अलैहि वसल्लम। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए जी,
1: हलाल का
0: होना चाहिए। ज़रूरी है कि यह हलाल का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम कहते हैं ना, तो जी
1: भूख रात तक खाएं फिर आपकी सेहत रहेगी,
0: सेहत रहेगी जी जी।
1: है ना, लिबास जो है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लिबास तकवा का लिबास।
0: तकवा, हाँ, देखो माशाल्लाह, क्या कहने, वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
1: जो भी आप कहने
0: जी,
1: तकवा,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
1: ये चीज़ें हैं तो
0: ना जी,
1: ज़्यादा टाइम ना लेते
0: हुए। नहीं, क्योंकि जो आप अच्छी बात कर रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत, ये जो आप बयानी कर रहे हैं ना, बड़ा ही खूबसूरत है कि जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह, और ऐसे ही होना चाहिए। और जो आपने कहा वो माशाल्लाह 100% माशाल्लाह, आपने अच्छी गुफ्तगू करते हैं और इल्मी गुफ्तगू करते हैं, जो देखो आपने निचोड़ निकाला है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं सर आंखों पर माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: आप याद दिलाते हैं।
0: नहीं नहीं, मैं जो मैं पढ़ता हूँ वही मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैंने ये पढ़ा हुआ है। और ये हमारे जो ना एक हमारे उस्ताद मोहतरम में पाकिस्तान से माशाल्लाह, वो बहुत ही तारक जमील साहब है माशाल्लाह, वो हमारे यहाँ पे आए, आते जाते रहते हैं माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड में। तो वो जब से मैंने उनके साथ मुलाकात करता हूँ ना, तो वो मुझे यही कहते हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो इल्मी गुफ्तगू होती है उनके साथ। तो बैठे रहें, 4 घंटे बैठे रहें, 10 घंटे बैठे, पता नहीं लगता कि कितने घंटे चले, तो वो ऐसे ही बातें करते थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना मैं शेयर कर दूं जी जी।
1: एक गजल है शारिक बलियावी, इनका नाम है
0: जी जी, अरशाद।
1: वो कहते हैं मिले जो गम भी
0: जी,
1: उसको वर्त खुशी की तरह।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मिले जो गम भी तो उसको वर्त खुशी की तरह।
0: वाह,
1: गुजारो जिंदगी दोस्तों, जिंदगी
0: की तरह। वाह वाह, मकरर जी, मकरर, बहुत खूबसूरत, वाह क्या कहने।
1: मिले जो गम भी तो उसको बर्त खुशी की तरह,
0: वाह,
1: गुजारो जिंदगी दोस्तों, जिंदगी
0: की तरह। वाह जी वाह, क्या कहने।
1: की तेरा किस है
0: जी,
1: जहाँ पे हक हो वहाँ हक की बात कह दीजिए।
0: वाह क्या कहने,
1: खामोश रहना भी जुर्म, खुदकुशी की तरह।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: जहाने हिरसो हवस का
0: जी,
1: तो है गिला।
0: वाह,
1: मिले हैं मुझको इंसान भी आदमी की तरह।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: जो बात शीरी जबानी से कही जाती है, जो बात शीरी बयानी से कही जाती
0: है, वाह,
1: वो बात दिल में उतरती है रोशनी की तरह।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह वाह।
1: रस्म जहाँ दारिये हयात यूं निभाओ,
0: वाह,
1: किसी को चाहो तो चाहो बंदगी
0: की तरह। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
1: फिर कहते हैं वफा की हुरमत है, हद का पास था मुझको,
0: वाह,
1: तुम्हारे शहर से गुजरा हूँ अजनबी
0: की तरह। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह बहुत खूब।
1: आखिरी शेर कहते हैं
0: जी जी, अरशाद।
1: मैं अपना आप मुकम्मल वजूद हूँ शारिक।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
1: मैं अपना आप मुकम्मल वजूद हूँ शारिक, मुझे गरज ही नहीं कि बनूं किसी और तरह।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह। बहुत खूब
1: टाइम हो तो चलो एक
0: सर जी क्यों क्यों शर्मिंदा करते मुझे प्रोग्राम ही है आपके लिए जी जी अरशद जी जी कोई कोई कोई बात आराम से आराम से
1: वो कहते हैं ये है मुबारक सदीकी उनकी गजल है
0: मुबारक सदीकी का माशाल्लाह क्या कहने जी
1: वो कहते हैं दुनिया की दिल दुखाने की आदत नहीं गई
0: हाय हाय हाय वाह क्या कहने
1: दिल दुखाने
0: की आदत नहीं गई बेशक वाह
1: अपनी भी मुस्कुराने की
0: ये आदत नहीं गई हाय हाय हाय हाय क्या कहने वाह
1: दामन जला ये दिल जला
0: जला
1: जली
0: वाह
1: दामन जला दिल
0: दिल जला
1: उंगलियां जली
0: वाह वाह
1: नहीं दिए जलाने की आदत नहीं,
0: नहीं गई हाय हाय हाय हाय क्या कहने वाह
1: कुछ तो गनीम उनपे भी मुस्तफिल मिजाज
0: वाह
1: कुछ वो गनीमे जान भी है मुस्तफिल मिजाज
0: वाह
1: मेरी जान से जाने की आदत
0: नहीं गई वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने
1: फरवेज भाई उससे कहो खदूस से लूटा करे मुझे
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने
1: उससे कहो
0: खदूस से लूटा करे हमें
1: मेरी फरेब खाने की आदत
0: नहीं गई हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने वाह
1: वो शेर बद नसीब है उसके मिजाज में
0: वाह
1: मोहसन का घर जलाने की आदत
0: नहीं गई हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: कुछ रोशनी से उनको अदावत अजल से है
0: वाह
1: कुछ रोशनी से उनको अदावत अजल से
0: है वाह
1: कुछ अपनी जगमगाने की आदत
0: नहीं गई वाह वाह वाह वाह क्या कहने
1: फिर कहते हैं फूंकों से आफताब बुझाने की जुस्तजू बच्चों से इस जमाने की आदत
0: नहीं गई वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह
1: गोतल किए हयात से पत्थर हो गया हूँ मैं
0: वाह
1: गोतल किए हयात से पत्थर हो गया हूँ मैं
0: वाह
1: लेकिन गजल सुनाने की आदत
0: नहीं गई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह और हमेशा ही ऐसा ही रहे मेरे भाई वाह ये आदत आपने छोड़नी नहीं है मेरे भाई हमें हमारा क्या होगा
1: आपने में आदत दी है ना तो अब खत्म नहीं होगी आप ही खत्म करेंगे तो
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे सेहतमंद जिंदगी दे और ऐसे ही दिलों का दोस्त आ रहे हैं माशाल्लाह आपको पसंद करते हैं इंजॉय करते हैं आपकी शायरी को माशाल्लाह बड़े बड़े आपको पता है ये प्रोग्राम सुना जाता है सब सुनते हैं प्रोग्राम को और वो इंजॉय करते हैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ कहना है आपने कुछ जी बहुत बहुत शुक्रिया खैर आज भी आपने महफिल लूट ली बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जज़ाकअल्लाह खैर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच वाह देखो ये होती है मोहब्बत की बात देखो इन्होंने एक पॉइंट नोट किया है और पॉइंट नोट करने का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया इनका और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करी ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं ओए होए होए देखो हमारा साथ कौन दे रहा है यहाँ पे अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे एक बहुत ही खूबसूरत हमारे लाडले आ गए हैं उनसे भी मुलाकात होगी हवा के दोष में बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे कीप इट लॉक्ड
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
4: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
3: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
4: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और यहाँ भी हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। अब्दुल कय्यूम साहब हमारा साथ है, अब्दुल कय्यूम साहब फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम फ्राइजिंग ओल्ड से वेलकम जी एन खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त घरों बाजारों दुकानों फैक्ट्रियों कारखानों इस पार या उस पार कहीं भी ये नशरियात सुनी जा रही हैं, मैं सबको सलाम अर्ज करता हूँ।
0: माशाल्लाह
1: आज आपने पता नहीं मुझसे कौन सा बदला लिया।
0: बदला मैं क्यों लूंगा, मैं आपसे मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, खलूस और मोहब्बत।
1: चलो हम भी लाइन छोड़ने वाले नहीं।
0: माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो काफी बिजी थी, आपको बताया वो अब टाइम आ गया था ना जान का। जी जी जी,
1: आज आज मेरे पास जो गीत है ना वो आपका पसंदीदा तरीन गीत में से मैं ये कह देता हूँ पहले।
0: हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: तो ये दूसरी बात है कि अब मेरी आवाज नहीं रही, बस कुछ कोशिश करूंगा।
0: सर जी आप तो क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि इतनी प्यारी आवाज है, अभी तो मैं जवान हूँ और अभी जवान ही है आप माशाल्लाह। जी
1: बातों तक
0: नहीं, नहीं नहीं
1: चलो
0: जी।
1: वो देखो जला घर किसी का,
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय।
1: वो देखो जला घर किसी का, वो टूटे हैं किसके सितारे, वो किस्मत हंसे और ऐसे हंसे के रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला घर किसी का, उधर रो रहे हैं ये आंसू, उधर आसमां रो रहा है, मुझे करके बर्बाद जालिम, पशेमान अब हो रहा है। ये बरखा कभी तो रुक जाएगी, रुकेंगे ना आंसू हमारे। वो देखो जला घर किसी का, गया जैसे झोंका हवा का, हमारी खुशी का जमाना, दिए हमको किस्मत ने आंसू, जब आया हमें मुस्कराना, बिना हम सफर ये सोनी ढग इकट जाएगी बेसहारे। देखो जला घर किसी का,
0: हाय हाय हाय हाय वाह
1: जी। आपका लगन मेरी आवाज
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वाकई मेरा मनपसंद गीत है, बड़ा ही प्यारा गीत है, बड़ा ही खूबसूरत गीत। वाह,
1: अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मेरे पास एक गजल है।
0: जी जी अरशाद अरशाद अरशाद जी जी।
1: चलो असले गुफ्तगु नहीं होता,
0: वाह
1: असले गुफ्तगु नहीं होता, वो सैराब आबजू नहीं होता।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: असले गुफ्तगु नहीं होता, वो सैराब आबजू नहीं होता, वरना मैं भी नमाज पढ़ लेता, आंसू से वजू नहीं होता।
0: आए, आए, आए, है, क्या कहने,
1: वरना मैं भी नमाज
0: पढ़ लेता, वाह,
1: वरना मैं भी नमाज पढ़ लेता, आंसू से वजू नहीं होता, और मैं भी होता नहीं हूँ पास अपने,
0: वाह,
1: मैं भी होता नहीं हूँ पास अपने, जब मेरे पास तू नहीं होता।
0: वाह वाह,
1: मैं भी होता नहीं हूँ पास अपने, जब मेरे पास तू नहीं होता, और क्यों परेशान है तू मेरे लिए,
0: वाह,
1: क्यों परेशान है तू मेरे लिए, सूखा सूखा पत्ता रफू नहीं होता।
0: वाह वाह, क्या कहने,
1: शुक्रिया जनाब, क्यों परेशान है तू मेरे लिए, सूखा पत्ता रफू नहीं होता, और किससे टकरा के टूट जाता हूँ तो अगर रूबरू नहीं होता।
0: वाह जी वाह, क्या कहने,
1: किससे टकरा के टूट जाता हूँ, किससे टकरा के टूट जाता हूँ तू अगर रूबरू नहीं होता। और शेर है सारी दुनिया थी खैर खा मेरी,
0: हा हा हा हा, क्या कहने,
1: सारी दुनिया थी खैर खा मेरी, वो जो मेरा अदू नहीं होता,
0: तो क्या कहने,
1: सारी दुनिया थी खैर खा मेरी, वो जो मेरा अदू नहीं होता।
0: वाह,
1: और तू ही कुछ कर गुजर मेरे लिए, मुझसे तो दिल का लहू
0: नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। वाह
1: शुक्रिया जनाब,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो गीत गुनगुनाया, बड़ा ही प्यारा गीत, और क्या कहने,

हाय हाय हाय क्या कहने मेरे भाई क्या खूबसूरत मेमोरी आपने रिफ्रेश कर दी हमारी बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया वाह जी वाह कमाल कर दिया आपने तो कमाल ही कर दिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब और कमाल के गीत लेके आते हैं और शेर शायरी तो कमाल की करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी वो प्रोग्राम में शिक्र करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इनका और यहाँ पर इनके लिए ये

0: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे डॉक्टर साहब आ गए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जब ये प्रोग्राम में शिरकत करते हैं माशाल्लाह। और आपने सुनाई कैसी तबीयत आपकी, और कैसे आपके मेहमान, आप मेहमान आप भी आए हुए?
1: बहुत बिजी रहा मेहमान, पाकिस्तान से आए।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।
1: स्कॉटलैंड
0: घुमा रहे थे वाह जी, बहुत खूबसूरत।
1: कल गए हैं,
0: कल वापस चले गए माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: बल्कि यूरोप गए हैं आगे, इटली वगैरह।
0: वाह जी वाह वाह वाह वाह, देखो देखो आपके इतने दोस्त आ रहे हैं माशाल्लाह, आपको इतने प्यार करते हैं आपके साथ, और ये खूबसूरती आपकी माशाल्लाह।
1: ये मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा पाना कि हम जैसों को टाइम दे देते हैं।
0: सर जी सर जी, आप माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपकी डिग्री होल्डर है माशाल्लाह, और जो ये फोटो लगा हुआ है आपके दरवाजे में, लगा हुआ है अंदर, लगा हुआ है, खूबसूरत नजर आ रहा है हमें, क्या कहने।
1: हाँ, वो वैसे भी मैं तो वो क्या कहते हैं कि मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे बेटा कि ये
0: जी जी
1: जी बड़ा पन होता है कि वो आपके घर आ जाए,
0: आ जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने सड़ी में आपकी बात काट रहा हूँ, CAF 51 आप थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपसे बात नहीं, आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। जी जी
1: जी जी, आप कर लें तो फिर बात करते
0: हैं। जी नहीं, क्योंकि एक हमारा साथ दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और उनको पता लगा कि आप आ गए तो वो उन्होंने भी फ़ोन करना शुरू कर दिया। सिमी जी हैं, उनकी फैमिली है, वो आपको सलाम पेश करें माशाल्लाह।
1: जी बहुत मेहरबानी मेरी तरफ से भी, उनको सलाम
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी जी जी बिस्मिल्लाह।
1: तो वो मैं कह रहा था कि वो अब जो मेहमान होता है ये तो खुदा की रहमत,
0: खुदा की रहमत होती है माशाल्लाह। इसमें
1: वो आ जाए तो वो समझे कि हर इंसान अपना रिज़्क तो लेके ही आता है,
0: ऐसे ही माशाल्लाह।
1: तो बाकी वो बल्कि जो आप हमारी, आप हमसे मोहब्बत करते हैं या आप इतना हमारा मान करते हैं,
0: जी जी,
1: तो उसमें मुझे एक पुराना अल्लामा इकबाल का फारसी शेर याद आता।
0: जी जी जी जी जी
1: जी, आस्ताना दारम बतवाफ खाना कारे बखुदाए खाना दार।
0: आई हाय, इसका दोबारा करें, मकरन
1: फारसी का तर्जुमा थोड़ा सा,
0: थोड़ा फारसी में है और इसमें फारसी थोड़ा दोबारा करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या
1: जी, तुबाई गुमा के शायद सरे आस्ताना दारम बतवाफ खाना कारे बखुदाए खाना दारम, के मुझे जो तू ये देख रहा है,
0: देख रहा है,
1: तवाफ काबा कर रहा हूँ, और तू ये समझ रहा है कि दरअसल काबा के गिर्द तवाफ कर रहा
0: हूँ,
1: तो मेरा मकसद वो नहीं है भाई, मेरा मकसद तो खुदा का कुर्ब हासिल करना,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: ये तवाफ काबा तो एक जरिया है,
0: सुभान अल्लाह।
1: तो इसी तरह आपकी फैमिली से मिलना ये हवा की दोष पे एक जरिया है,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी आए ना हमारे ब्रैडफोर्ड में, यॉर्कशायर में कभी आए?
1: जी ब्रैडफोर्ड में कभी, बस आप जब बुलाएंगे तो चक्कर भी लगा लेंगे।
0: आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे, जिमी भी है और बाकी दोस्त बाबे हैं आपके चाहने वाले हैं माशाल्लाह, और किसी रोज हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह, और शायद वहाँ भी आएंगे और यहाँ भी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आप भी काफी बिजी होते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। जी
1: तो हाँ जी, तो बड़े सब दोस्तों के साथ बड़ा आपका माशाल्लाह प्रोग्राम, तो आपको
0: ये आप सब आपकी मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी है, आप हमें बताते हैं ये है ऐसे है ऐसे है ऐसे करना, और हम आप हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप माशाल्लाह, इल्मी गुफ्तगू करते हैं, जो भी आपको मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, और आपके पास जो इल्म है नॉलेज है माशाल्लाह, और बड़ा ही खूबसूरत नॉलेज, बड़ा ही खूबसूरत।
1: बल्कि अपने दोस्त को जो वो आए हुए थे, ही वाज ही इज अ सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, तो माशाल्लाह उनसे मैं, हम हंस रहे थे बैठे
0: जी जी जी जी,
1: तो वो हम किसी को मिलने गए तो वो पूछ रहे थे हमसे कि जी वो आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं करता, के
0: जी
1: एक शेर आपको सुना देता हूँ, वहां से पता लग जाता है।
0: जी जी जी जी माशाल्लाह, देखो आप आए और हमारे मोहतरम भी आ गए, सब आ गए माशाल्लाह, आपकी आवाज देखो, आपकी आवाज सुन के देखो सब आ गए माशाल्लाह। जी देखो माशाल्लाह जी,
1: तो उनको मैंने कहा कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम,
0: हाय हाय, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। हाय हाय
1: मुझे तो और कोई काम भी नहीं
0: ही है। हाय हाय हाय हाय वाह।
1: तो मैंने कहा भाई हमने तो और सारी जिंदगी किताबें पढ़ी
0: माशाल्लाह,
1: किताबें ही हमारे साथ रही।
0: नहीं ये किताबें देखो आपको ये काम आ गई है ना, देखो ये किताबें आपने पढ़ी है ना, तो देखो आपने डिग्री हासिल की है, आपको वो भी यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी के बहुत लोग जो ना
1: अदरवाइज भी ना वो सारी जिंदगी दोस्त भी ना मेरा मेरा बचपन से मेरी किताबें ही मेरा दोस्त
0: ऐसे यहाँ ऐसे ही
1: उसमें वो इल्म वाली तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और साहिब इल्म लोग
0: माशाल्लाह। देखो ये खूबसूरती होती है, देखो जो पढ़ा लिखा होता है ना दुश्मन भी कहते हैं
1: माशाल्लाह, इससे बेहतर बातें करते हैं
0: माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह आपको तो माशाल्लाह अल्लाह ताला।
1: मैं तो बस अपनी एक वो क्या कहते हैं कि क्योंकि नालायक आदमी हूँ कभी कभार हाजिरी लगा लेता हूँ क्योंकि टाइम से हो।
0: नहीं नहीं मुझे मुझे पता है,
1: मैं सुन रहा हूँ
0: मुझे पता है मुझे पता है, पिछले हफ्ते भी आपने कोशिश की है उससे पहले भी माशाल्लाह बड़ा ही बड़ा अच्छा
1: मेरे पास थे और मैंने करनी थी कॉल।
0: जी जी जी तो वो लाइनें बिजी थी माशाल्लाह और लाइनें फिर ड्रॉप हो गई लाइन फिर उसमें
1: वो लाइंस भी
0: जी जी ड्रॉप हो जाती है
1: कि गुड लक है ना जी कि कभी मिल जाए तो।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मैं जी, जी जी और आज कौन सी ताजी ताजी फ्रेश
1: तो
0: फ्रेश
1: ताजा कुछ गजल है तो उसके कुछ शेर
0: जी जी
1: सबकी समातों की नजर है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: के मेरे कूजा घर तेरा शुक्रिया मुझे चाक पर से उतार दे।
0: हाय हाय हाय वाह माशाल्लाह वाह क्या कहने
1: मेरे कूजा घर तेरा शुक्रिया मुझे चाक पर से उतार
0: दे। वाह
1: ये वजूद है तेरा मौजजा मुझे चाक पर से उतार
0: दे। होय होय क्या कहने मेरे भाई क्या कहने
1: मेरे जर्रे जर्रे में जायका तेरे लम्से आईना साज का।
0: वाह
1: मुझे झेलने दे ये तजुर्बा मुझे चाक पर से उतार दे।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने
1: मेरे खद्दो खाल में मुनाकिस तेरी उम्र भर की रियाज दे।
0: वाह क्या कहने बहुत खूब
1: ये उसका तर्जमा आयत का लकद खलकना लिंदा
0: इंसान है वो ऐसी ऐसी ऐसी माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी
1: उसका तर्जमा है कि मेरे खद्दो खाल में मुनकसिम तेरी उम्र भर की रियाज दे
0: माशाल्लाह
1: मेरी कौस हो गई है दायरा मुझे चाक पर से उतार।
0: हाय हाय हाय हाय सुभान अल्लाह क्या कहने क्या कहने
1: मेरी कौस हो गई दायरा मुझे चाक पर से उतार दे। और शेर है कि मेरी खाक में ये नमी रहे कि नहीं रहे इसे छोड़ दे।
0: वाह वाह वाह
1: मेरा हथ हस्तो बूद से मार का मुझे चाक पर से उतार दे।
0: वाह
1: और मेरे ख्वाब खुश को समेट दे ये बिसात अपनी लपेट दे।
0: वाह जी वाह
1: मुझे आजमाने दे हौसला मुझे चाक पर से उतार दे।
0: वाह
1: और ये कहां के हिजरो विसाल हैं जो अजहर पे वारद हाल है।
0: ओए होए होए कमाल कर दिया ब्यूटीफुल
1: कहां के हिजरो विसाल हैं जो अजहर पे वारद हाल हैं।
0: वाह
1: मेरा खुद से कितना है फासला मुझे चाक पर से उतार
0: दे। वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: ये है
0: बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आला बहुत खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा लगा आप आए और अतीका साहिबा हैं वो आपको बहुत बहुत सारा सलाम पेश कर रही उन्होंने फूल आपके लिए भेजे हैं उन्होंने दुआएं आपके लिए किए हैं और बड़ा अच्छा लगा उन्होंने इंजॉय किया माशाल्लाह और बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। देखो आपके कितने चाहने वाले हैं माशाल्लाह आपको सलाम पेश करते हैं आदाब जी
1: सबको और ये सब मैं सब फिर वही मैं बात कहूंगा कि ये उस जो लोग आपका प्यार आपसे एहतराम आपके लिए दुआ करते हैं ये वो बड़े लोग होते हैं
0: बड़े लोग बाकी इसमें कोई शक
1: वो जिंदगी में कम लोगों को नसीब होते हैं तो
0: जी।
1: हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे लिए कोई
0: दुआ करता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
1: अल्लाह
0: माशाल्लाह
1: ये अच्छा समझता है हमारे बारे में अच्छा गुमान करता है तो ये खुदा की एक
0: नेमत है नेमत नेमत नेमत ऐसी ऐसी ऐसी माशाल्लाह
1: ये तो इसलिए मैं समझता हूँ ये उन सब का बड़ा पद है कि वो हमारे लिए करते हैं मैं बिल्कुल उनकी मोहब्बत का कर्जदार
0: हाय हाय हाय क्या बात है क्या बात देखो ये होती है खूबसूरती होती है जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह आप जैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और आरजी जिंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं एक हमारे उस्ताद हैं तारिक जमीर साहब हैं और जब मैं आपसे बात करता हूँ उनसे बात करता ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो बड़ा ही एक उन इल्मी गुफ्तगू होती है बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होती है और आप दरवेश हैं माशाल्लाह और दरवेशों को मैं सलाम सलाम पेश करता हूं और जितनी भी मैं आपकी तारीफ करूंगा मैं माशाल्लाह दरवेश वाकई इसमें कोई शक नहीं है मैं आपको जानता हूं और जो सुनने वाले हैं आपको जानते हैं आपको उनको पता है कि आप की जो एडुकेशन है और जो आपके हवाले से दरवेशों की जीत ऐसे और वही चीज़ है और वही खूबसूरती आप में और आप में कोई शो ऑफ नहीं है नखरा नहीं है और बहुत बहुत शुक्रिया सर आप बहुत
1: हम दरी पे बैठने वाले लोग
0: हाय हाय हाय हाय दरी में बैठने वाले
1: हशम से तो लेना देना है
0: हाय हाय हाय
1: हम तो चटाई पे बैठे
0: चटाई की बैठने दरी में बैठने वाले लोग हैं वैसे ही हम फकीर हैं मलंगे भाई
1: मैं तो अक्सर सोता भी जमीन पे ही
0: हूं माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छा लगा
1: बहुत थैंक यू
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने आज महफिल लूट ली मेरे भाई अल्लाह पाक हमेशा को खुश रखे शादाबाद रखे सलामत रखे फैमिली के साथ रखे और माशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे हम कलाम होंगे इंशाल्लाह जल जिंदगी रही तो संडे की शाम और आपके नाम बहुत बहुत शुक्रिया सर
1: जी आपकी मोहब्बत
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर रब रखा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जज़ाकअल्लाह खैर बहुत बहुत शुक्रिया वाओ What a beautiful gentleman, mashallah. What a beautiful, wow. क्या कहने जितनी भी मैं इनकी मैं तारीफ करूँ कम है बहुत बहुत शुक्रिया एक और हमारे उस्ताद मोहतरम में मैं किस किस की यहाँ पर तारीफ करूँ माशाल्लाह वो भी आ गए हैं मेरे लाडला भी आ गया है माशाल्लाह और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये ना हो कि देर हो जाए और मैं देर करता नहीं हूँ देर हो जाती है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमें अच्छा लग रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू वेरी मच है और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि दो कॉलर हैं और हमारा साथ दे रहे और क्योंकि मेरे साथ दे रहे वो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे
2: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Time in the studio is 10 to 11. और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद हमारे साथ दे रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाज हैं हमारे लाडला हैं और अतीका साहिबा हैं वो भी आ गई हैं बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord, you can trust.
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473
0: 5043 Right welcome back listener you're listening to radio aur yahan bhi hamara saath hai hamare ladla hain aur ab ladla ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chaudhary Firyaz sahab
4: Waalaikum
0: salam bismillah bismillah Chaudhary sahab bismillah ji Chaudhary sahab
4: pata chalya ke mere to piche mere baaji ne to unna ki
0: चौधरी साहब तुम पाकिस्तान फोन करने खर्चा पानी होना तो इन्हें ज्यादा खर्चा हो जाए तो फिर क्या हाल है तो थोड़ी मर्जी है बहुत शुक्रिया और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ पे अतीका साहब है हमारा साथ दे रही है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी बिस्मिल्लाह करना और आपको मौका दिया इन्होंने चौधरी फरियाज साहब कह रहे हैं कि आप आपको पहले लेके जाएं बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि देखो कितने बड़े माशाल्लाह दिल वाले हैं माशाल्लाह जी आप शुरू करें ये ना हो कि लेट हो जाए देर हो जाए जी बिस्मिल्लाह करें
5: सबको सलाम सबसे पहले तो
0: जी
5: जितने भी आपके बिरंगे महफिल के सितारे आए उनको बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम सलाम
5: और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश हुआ
0: बहुत ही नाइस हुआ बड़ा ही खूबसूरत है माशाल्लाह
5: आज का प्रोग्राम जो है ना वो
0: यादगारी होगी है
5: बहुत ही यादगार प्रोग्राम
0: है माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह
5: सबने इतनी खूबसूरत पेश किए सब जो बातें और अचार जितनी भी तारीफ करें कम है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
5: माशाल्लाह। थोड़ा सा दो थोड़े से शेर दो चार पढ़ेंगे
0: जी जी जी जी इरशाद
5: को भी मौका देंगे
0: जी जी जी जी जी जी माशाल्लाह।
5: कहते आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर
0: वाह
5: किसके गम कहां तक हैं शिद्दतें कहां तक हैं।
0: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब।
5: किसके गम कहां तक हैं शिद्दतें कहां तक हैं
0: वाह
5: कुछ अजीज लोगों से पूछना तो पड़ता है।
0: वाह जी वाह क्या कहने
5: आजकल मोहब्बत की कीमतें कहां तक हैं।
0: हां
5: शाम आ जाओ खुल के हाले दिल कह ले
0: वाह
5: कौन जाने सांसों की मोहलतें कहां तक
0: चुके है। वाह वाह वाह क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब।
5: आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर किसके गम कहां तक हैं शिद्दतें कहां तक।
0: वाह जी वाह कमाल कर दिया।
5: तो कहते हैं एक
0: जी जी
5: बिछड़ते वक्त उसकी आंख में इजाजत के सिवा कुछ ना था।
0: आहा क्या कहने
5: बिछड़ते वक्त उसकी आंख में इजाजत के सिवा कुछ
0: भी नहीं था। वाह
5: मेरे खुश्क लबों पे वक्त अलविदा के सिवा कुछ ना था।
0: वाह वाह क्या कहने वाह
5: वो आखिरी निगाह भी अजब हिसाब लेकर गई।
0: आहा
5: मेरे वजूद में टूट दी सदा के सिवा कुछ ना था।
0: वाह वाह वाह वाह क्या कहने
5: हमें उम्र भर उस एक शख्स का इंतजार ही रहा।
0: वाह
5: मारे हाथ में के इंतजार के सिवा कुछ न था।
0: हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब बहुत खूब।
5: बिछड़ते वक्त उसकी आंख में इजाजत के सिवा कुछ न था। मेरे खुश्क लबों पे फक्त अलविदा के सिवा
0: कुछ न था। हाय हाय हाय क्या
5: बहुत शुक्रिया आपने
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें।
5: फरियाद भाई को बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एंड दैट वाज अतीका साहिब बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और आई और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे लाडला हैं और लाडला जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और हमें याद करें और बहुत बहुत शुक्रिया नशीन जी वो फ्लश लगी हुई है जी बिस्मिल्लाह करें जी
4: जी जी।
0: मेरा ख्याल है जो जो दो लाख है ना दो लाख रुपया जो ना वो आना ही आपके पास आना ही आना है। वाह जी वाह देखो कितना प्यार करते हैं आपके साथ
4: सारे शेर सारे शायरी ना वैसे पर कैसे ज्यादा
0: जी जी जी जी जी जी जी
4: चलो
0: जी
4: फिर मेरी तरफ से पूरी मैथ की
0: जी
4: बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम
4: सलाम खुश रखे अल्लाह सलामत रखे
0: जी
4: सारियां दुआओं सारियां नाम
0: जी माशाल्लाह।
4: अनने के कदे से देसे हैं दीदार आके
0: वाह वाह
4: कदे से
0: देसे हैं दीदार
4: आके इसे आस में जाता हूं गुजार जिंदगी
0: वाह
4: कदे वापस बुलाया ना आती या बिना तेरे जो गुजर जाती यार जिंदगी।
0: वाह जी वाह क्या कहने
4: कदे वापस बुलाया ना आती बिना तेरे जो गुजरती यार जिंदगी सबर में गुजर जाती जेडी रहनी है दिन दो चार जिंदगी तेरे विचरण तो बाद शवाक बाद रेया जरा ना नाल प्यार जिंदगी।
0: वाह जी वाह क्या कहनी क्या कहनी।
4: खोया फिरता था जिसकी तलाश अंदर
0: वाह
4: खोया फिरता था जिसकी तलाश अंदर वो दिलरुबा आंखों का तारा है तू
0: वाह
4: तेरे दम नाल दुनिया आबाद मेरी मेरे चांद मुझसे मुझे जान से प्यारा है तू।
0: वाह क्या कहनी
4: तेरे दम नाल दुनिया आबाद मेरी मेरे चांद मुझे जान से प्यारा है तू।
0: वाह
4: जुग जुग करते उसीन है कदम बोसी जुग जुग करते उसीन है कदम बोसी रूह रोशन जा करता अशकारा है तू।
0: वाह
4: तेरे हुसन की करूं तारीफ मैं क्या सारे जग में बादल नियारा है
0: तू। वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने।
4: अच्छा फिर चाहत